ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक झाला आंब ताक धुक ताक ताली गेन तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता झन झाले कोक तारी दाबू तारी गेटे ताक झुम तारी ता जग तारी ता झन झाले कोक तारी दाबू तारी गेटे झम तारी

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

शिक्षा दी गई और इस भजन को सुनने का आनंद तभी है, तभी कोई अर्थ है। इसमें दी गई शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the band that you are.
0: You are. Tu jaane toch.
2: Kahe do tumhe, ya chup rahu
3: na.
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

तू बाहर आने पर याद आती हो। फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, उजाला रेडियो, फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

लग जा गले, आपने नफा सुने हैं उजाला रेडियो पर। सुनने वालों मालूम रहे कि आज शाम 1 बजे वही प्रोग्राम पेश किया जाएगा, दिल है सरनामी। दस्तान फन सुरीनाम मैं रोबी मक्का के साथ हम बनाने वाले हैं शाम 1 बजे से प्रोग्राम। दिस नीट vanaf nu elke zondagochtend, maar elke zondagmiddag vanaf 1 uur. Sjaamke wacht, je programma naar Jijga met Robbie Makka, Zerusun Lena.

अब उजाला रेडियो के जरिए हम गाना आपको सुनाने को जा रहे हैं जो कि दिल को छू जाते हैं। ऐसा गाना है म्यूजिक दिए नीत अलाइन होट मार ओक फुल्ट उजाला रेडियो पर।

0: en Mouse Meal Road Kazaat. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, O Nizam Wagyu zijn. Wacht weer op naar Tika Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat Museum. Inloop. Or program. Gut me keer jij gaat raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Au Suni Kipperi. Ik hazien raad. Aapke naam.
1: का झंडा एक हाथ में श्री नाम का झंडा दूजे में तलवार कोम का होगा तभी उधार।
2: और सुनने वालों, अगर आपके दिल अभी तक जुड़ल है आपके जन्म भूमि सुरिनाम से और आप मांगे हैं जाने कि हुआ पर का होवे है और कैसे होवे है, तब हर एक एतवार के दिन में 1 बजे से सुनिए उजाला रेडियो पर प्रोग्राम दिल है सरनामी। इस प्रोग्राम में रॉबी मक्का आपके फोड़ फोड़ के सरनाम के हाल चाल बतावे है। दिल है सरनामी में आप वो सब बतियन सुनिए जोन और कहीं पर ना सुनिए और कहीं पर ना पढ़िए। प्रोग्राम दिल है सरनामी लोहित महावीर पॉलिटिक इकोनॉमिक एनालिस्ट रॉबी मक्का के साथ हर एक इतवार के दिन में 1 बजे से सिर्फ उजाला रेडियो पर। प्रोग्राम दिल है सरनामी तो के सुने के पड़ी।
1: एक ही झंडा के नीचे अब सबको आना होगा।
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से परिवार बहादुर, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के ननिया सास आईमे और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल की पत्तो रोटरडम लेयर वार्त एसलमोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मल्लिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी अल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंदे लेयरवार्त की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 101 101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार सुनिए कपेल ऑन द एसल से। परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की मां, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कपेल ऑन द एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत। बेटी आशा बहादुर की मां, दामाद पिम देदर्त की सास, अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी, आल्बा गोंजालेस के ननिया सास, आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी, रोटरडम एसल मोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदाखम त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए खुश ज़ेलांड से। समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर बया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय प्रीतिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर्ख फोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। खुश ज़ेलांड से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार और स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो लीन बासदेव बहादुर बेया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमणि जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट वेलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा हम त्वे उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉय को बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिजानंद कुमार बॉय को बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि पहले सूरीनाम निवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयक बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयक बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है और इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया सोमवार दिन में 2 बजे मांदांद त्वे ऊर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-51-55-02-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल है।

तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए, दिल एना दान के साथ रेमोन। एंड ये है उजाला रेडियो और मैं हूं तू जाने है तो। एंड नाउ अ ट्रिब्यूट टू सुंदर पोपो जी। आज का प्रोग्राम में सुनने वालों, आप सुनेंगे जो कि पेश है आप हर एक सुनने वालों के लिए। चलिए अ ट्रिब्यूट टू सुंदर पोपो रवि बी के जरिए।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैक द बेस्ट उजाला रेडियो

और दिल कभी हमको समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं, ऐसा भी होता है। आप सुने फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कुमार सानू की आवाज और फिल्म परदेश का गीत, स्टेशन उजाला रेडियो।

0: QR.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
3: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ?
2: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
3: तो भुगतो।

0: कितना मोई गाना ना, कितना मोई गाना कि जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना,
1: साथी साथ में रहना, जीवन साथी।
0: उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं।

0: और अगर कोई के तुके ना बफाल हो दूसर कोई कैसे करेगा तो तू अपने जाय कर भैया
1: हाँ
0: मन्ना स्थानीय लांग द साई लाइन अली मात स्क्रेव एंड द दून हो अप कपदर में
1: या अब देखना तो
0: गुस्सा लग जाएगा मैं यही वेल्ड ना फैट है यही वेल्ड ना फैट है
1: इस वेल्ड ना साइफर्स फैट एंड उजाला इस या सब कोई के जुबान पे उजाला है
0: कैक उजाला रेडियो के बारे में एक दो एक हाथ द्री स्टोकिया साकलोइट एंड द्री क्लाइन स्टोकिया उजाला रेडियो सेट फॉलोअप इन ऑफ द याबी सबको जाने
1: या
0: दिस कोई कोई पुराना लोग जो हैगा औदर आदमी सोच छो ऊ कौन सी हैगा भैया ऊ हैगा एगो नावा फोरम फन एफएम पहले रहा आएम तो आएम के बाद आएल एफएम के बाद दिया बे दोस एफएम जो है ऊ पासे ही है ऊ बीत गए है सुनने वालों
1: पार यार दने से तेल माल पासे या
0: ऊ धीरे धीरे दोन बदस उजाला से ताल पार यार इन फॉलोअप ऑफ दिया बे दोस का होवेगा दिया बे ख्रुइत दिने दिन दिने दिन पे उजाला दिया बे ख्रुइ होवेगा उजाला एन रेडियो स्टेशन है देश भर में हिंदुस्तानी का रेडियो स्टेशन जो लंदलक बा दे या बे बे दोस्तों चाहे जहां पे आते तो उजाला सुनिए दोस्त दैट इज गवेल्डिग सिंस एंड सिंस 2020 है लॉयड जोन जोन ओटो आवेगा जोन जोन ओटो बनेगा यूरोपीय मार्क पे जोन आवे दोस्त नीदरलैंड पे आवेगा दिस इज फॉरप्लेक्ट ऑन दे या बे इन द बाव दोस्त जेकर ओटो और पुरान बा फनफ 2021 20 से जोड़ सकेगा एंड 20 जेकर ओतो और पुरान बा ओसे ओके ना होई दे या बे साइड बाकी जेके जेके 6 बरिस पुराना ओतो बा साइड ओतो हुआ तो 10 बरिस पुरान होई गया बात तो के ना होई साइड मा जेकर ओतो बे 6 बरिस बा और मेस्ट मेन सा बाला न्यू ओतो है हिंदुस्तान से कर कि तो उलीस करेगा कि तो उकिनिस बा कि तो है हिंदुस्तानी के मोहेगा चीज बा दोस सही है बस स्टैंडर्ड दे या बे इन ऑन ऑटो लॉयड
1: या या या
0: वार दोस ऑटोमेटिक चीज बा दे या बे पे चल जाएगा तो सुनिए चाहे जहां पे दे या बे के फोर दिल हैगा कि खलोइड जो है एकदम डिजिटल है
1: मैं उजाला के खलोइड में होएगा
0: हां डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग ओकर मतलब बा दे या बे डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग दोस ओकर मतलब मन ना रॉइस ना चुई ना चाय कुछ ना एकदम टॉप खलोइड उजाला रेडियो दोस एंखलक किस करेगा फॉर द टू कॉम्स लॉयड हम लोग ना मांगीला फासी रहे आएम में एफएम में हम लोग मांगीला बा दिया बे में कस के ओही खत्म लोग लंदलक ओ मन बाती हम लोग के प्रोग्राम जो नहींगा खफरियत आएगा म्यूजिक कोई जो नहींगा खफरियत आएगा रकम रकम के प्रोग्राम आएगा अबे न तू बनाई ले बात है न्यूज और चुनाव ऐत खबरेत में रॉबी मां हम लोग के कॉफी एंड चाय जो नहींगा हम लोग के दूसरा दूसरा प्रोग्राम जो नहींगा खवेल्द खालमाल में ताल दी है मोय म्यूजिक verkeersinformatie professioneel.
1: Ja.
0: Fileberichten, fileberichten, verkeersinformatie. Ik heb dat al ooit.
1: Ja, ja, ja.
0: Weerbericht, professioneel. Nieuws, professioneel. Her ghanta pe. Dus wat wij doen is eigenlijk toekomstproof. Zo moet radio zijn. और हम लोग विश्वास करीला इन द मनीर वर ऑफ वे द दून लॉयड दिस और तुम मांगे साइफर जाने
1: हां माने ओई ओई ओई हम गोरिला कब से
0: तुम्हारे जाने
1: एक ग्लास नर बतोख पे या फया मैं अब तो बताओ अब तो बताओ
0: दिस दिस उजाला तू सुन सकेगा ऑनलाइन दिस ओकर मतलब इंटरनेट के जरिए जोन जोन में सुनेगा मत इंटरनेट रेडियो या तो अपन मोबाइल पे या तो अपन कंप्यूटर पे ओके बोला जाए इंटरनेट रेडियो द नास नथ यू लग दे या बे प्लस पे दिस वा भर में

0: यस लोहित को और झलक सुना दे, लोहित को और झलक तो सुना दे तो ये अपन हेल बुल झलक्स दार थोड़ा थोड़ा इन तो से प्रातिकत हो फॉल हो सुनने वालों आंशिक दिन सो दिन विल मई मार्कन और तोर शहर में है गा तोर देश में है गा ओकल वोनियन दना ओकल वोनियन रोटरडम ये पक द आउट हो तो के ना हो पक कोरियल कैसे बोलेगा पखाई बोट चलाई क्या आवेगे तो के खाली बैठक बापन लुक्स ऑटो में मैट दे या बे ए राइड ना अम्स्टर्डम एंड यू मेक अ फैंटास्टिक आवंट मे 19 सितंबर सैटरडे रही लॉयड ik ga het zo
1: ja ja we gaan live recording en trouwens voor de mensen thuis als je daar komt je krijgt een gratis drankje gratis garderobe hè, gratis toilet toe bij jij ze kijken al kon je gratis meenemen
0: hamel ook beetje laptop zingen
1: jullie krijgen alles ook mee op die dag
0: die avond
1: zijn niet jullie keer raad hier
0: sunona
1: sunona sunona sunona sunona sunona

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और अदा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों, यहां से आप लोग सुनेंगे प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रे को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना अल्लाह से दुआ है आप रे की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, यहां से लेकर ठीक वैसे इसका प्रोग्राम 5 बजे शाम तक आप लोग सुनेंगे। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 920-363-0808 पर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले सके। आयो सुबह से गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक मैं आप सभी को शाम का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस बैठक गाना को गाने वाले होंगे स्वर्गीय रामदेव चैतू जी।

वेल शबाज हरदम हरि सेतु प्रीत लगा ले अवसरों से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो यंग टाइगर ऑफ बैठक गाना विशाल हीरा।

लाली शाबाश शाबाश आनाने पवन कुमार और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने द यंग टाइगर ऑफ बाइट गाना खास करके विशाल हीरा के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। अब की बार चलिए प्रोग्राम में तो हिस्सा लेने वाला है देखा जाए खास करके जयंत महावीर। और हमारे प्यारे सुनने वाले जो गाना हम आप लोग को सुनाने वाले अभी वो गाना हम आपको सुनाने देंगे जयंत महावीर में, जयंत महावीर के आवाज में। लेकिन इससे पहले होंगे द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जे और देखा जाए तोरण हाउस में जहां पर सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने खुद मिना

0: शाबाश शाबाश कौन अलबेरी जरा पानी भरे। और सरस्वती द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और हम आप लोग से वादा किए थे जयंत महावीर
1: वो सच्चा इंसान अरे इस घर
0: अलमेरे में जहां पर इस वक्त मनोज मुंगार जी प्रोग्राम

वेल शाबाश शाबाश। और इस तरह से जयंत महावीर के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एन यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे आज इतवार का शाम का प्रोग्राम।

Vallı şaban şaban şey kavr toparcı Surinam diska hanş kırkı krizom çeydi ki avans mı gana jo program mı abi aap log sune Surinam des mi ek sek topar hep baytha gana kam ek kavr topar baytha gana jo Surinam diska aur uska naam hai Servin Çeydu ki avans mı और ये गाना पेश है दनहाग शहर का रहने वाला रकेश के लिए वेस्ट इंडीज बैठ गाना

और रे हमारे प्यारे सुनने वालों, ना दे ब्रेक, ना दे रिक्लाम यार, और तुरंत हम आप लोग से फिर मिलेंगे ब्रेक के उस पार। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है, हम सुराम शर्ट से प्रोग्राम को बना रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा इस यू आर यबल आई बॉय चलंदर। अरे सैया तोरे गोदी में

वाउ ले चाहे जहां पर आप लोग हमें सुनते होंगे, वाउ सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक। यू आर द बेस्ट वन।

टाई बॉय सैया सैया तोरे गोदी में गेना बन जाऊंगा एंड जब मोरे बलमा के भूख लगेगा तब मुके सेकर दाल भात खवाबे आइया उजाला रेडियो का प्रोग्राम दूसरा भाग एंड आखिरी भाग बैठक गाना हंगामा वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम।

चलिए हमारे प्यारे सुनोले, अब की बार जो बैठे गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देखा जाए गाना को मांग करने वाला है, और खास करके फैंस पोल्डर में जो रहते हैं खास करके एमी गाना को मांग किया है, और चलिए तो एमी के लिए गाना पेश है, और इस गाना को गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैठे गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी, और ना तिलक हमार मसीनिया ना जाने का बोले यार। चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

0: अरे बापरे हमार मसीनिया किरिजबा एंड हमें सौ तो खबावे और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुने बोलो अब की बार गाना जो सुनी है
1: ना मरली भेर अरे कि ना करली देर
0: और जो गाना हम आप लोग को सुनाने वाले तो देखा जाए होरन शहर में जहां पर सीना भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम

पाथर मोरी कर यहीं डूब भूई डोले बालम आई सारा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने अंडे के जय लय सफे शहर में सानू भी प्रोग्राम को बैठ के सुने हैं वाल घर के काम सब हो गए हैं मतलब एल्क सोमदाह के सब कोई अपन घर के काम करे कोई कोई कपड़ा सरी करे है कोई कोई कपड़ा धोवे है या तो धोवावत हो

शाबाश शाबाश बोले अखिया मिला के चले नहीं जाना द टॉपर फ्रॉम सुरीनाम कृषम छेदी और ब्रेडा शर्मा श्रीमान और श्रीमती बिहारी प्रोग्राम को सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम

शाबाश। शाओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप लोग बैठ करके भोजन करते होंगे चाहे जो ची बैठ करके खात होइए, मोई से खाइए, स्वादिष्ट से खाइए, ऐसे स्मैक लग। अब एक बात खाली बोली लो, हमें ना भूलिए लक्कर एंड यू आर उजाला रेडियो। और देखा जाए अमस्टरडम आकर में भाई हैं गोपी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम

वेल धनिया ले लो और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने बोलो एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए खास करके हम सुनम साहब तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने हैं तो ये गाना आप लोग के नाम गाने वाले होंगे अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने अंगंत भोला सिंह जी के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो है। और चली देखे सिल्वा के माई का करे है।

मोर मन लागल तो से यार, मोर मन लागल तो से। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुने, और वो भी खास करके स्वर्गीय राजू शिव गुलाम जी के आवाज में। एंड अब की बार देखा जाए ब्रेडा शहर में, जहां पर इस वक्त गायत्री प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो इस गाने को मांग के, तो चलिए गायत्री ये गाना तो

फिलहाल मोहिला के हैं एंड द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवनाथ जी के आवाज में गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हमारे प्यारे सुनने वालों करीबन दो मिनट बाकी रहा पांच बजे में धीरे धीरे हम आप लोग से अपनी इजाजत चाहेंगे आशा की आज का बैठक गाना का प्रोग्राम वैसे इसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा आप सभी सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे अरे बाप रे अब बोले सुतना देवी अब कर हुआ हमार दया तुरिये हमारे प्यारे सुनने वालों आप लोग अपना इतवार का शाम इतवार का रात्रि मोई से बनाइयो मोई से बिताइयो मोई से रहियो अपने आप के जरूर से ख्याल कीजिए जो भी करना है आज कर ले कल के वादा ना कर जो भी करिए प्यार से करिए नहीं तो ना करिए वेल आप लोग मोई से रहियो पुरसरा की सलमाल एटी सुमाकल स्वादी से भोजन कीजिए ना आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे सही कर हमार कर यहाँ तुरी है तो बड़ा दुख पाइए आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार राम राम नमस्ते एंड खुदा हाफिज खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद मोइस रहियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मरलिशा देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी परपतो अल्बा गोंजालस के ननिया सास आईमे और फेलरी देदर्त के पर आजी स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गोलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो रोटरडम लेयर वार्त एसलमोंदे की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेर खफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी जो थी। रोटरडम से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार और पति श्रीमान सुन तुलसीराम बहादुर की पत्नी लड़कन आशा बॉयकल उर्मी और सुनील बहादुर की माँ पिम देदर्त के सास अनिल और मलेशिया देदर्त के नानी किनारा और त्रिकय बहादुर के आजी अल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसलमोंद लेयरवार्त की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा होम त्वी उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 101 101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार सुनिए कापेल ऑन देन एसल से। परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम न्यूवेरखफोंडनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेला ऑन देन एसल से परिवार बहादुर देदर्त बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत बेटी आशा बहादुर की मां दामाद पिम देदर्त की सास अनिल और मरलिशा देदर्त की नानी आल्बा गोंजालेस के ननिया सास आईमी और फेलरी देदर्त के पर आजी रोटरडम एसल मोंदे की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाहक्रिया आने वाले सोमवार दिन में 2 बजे मांदा हम त्वी उर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए खुश ज़ेलान से। समस्त परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल के आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल के पतो लीन बासदेव बहादुर बया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय प्रीतिपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निवेर्ख फोंदनवेख मेस्टर बोईती के निवासी जो थी। खुश ज़ेलान से परिवार बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त ख्यार औत स्वर्गीय ससुर श्री रामचंद्र बहादुर और स्वर्गीय सास श्री गुलबिया बहादुर मंगरूलाल की पतो लीन बासदेव बहादुर बेया बहादुर सीता बहादुर इंदर बहादुर सुभाष बहादुर लिली बहादुर सांद्रा वेलखर्स बहादुर स्वर्गीय पृथ्वीपाल बहादुर स्वर्गीय हरिहर प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय भागमनी जगेसर बहादुर के भौजी स्वर्गीय सूरज प्रसाद बहादुर स्वर्गीय अमृत प्रसाद बहादुर और स्वर्गीय जॉन दुर्गाराम की छुटकी व्रीता लेन बहादुर की बड़की एरिका स्ट्यूरमान और ह्यूबर्ट विलखर्स के सरहज सभी लड़कन के बड़की माई काकी मामी नानी और आजी रोटरडम एसल मोंदे लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती रामकुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार के दिन में 2 बजे मांदा हम त्वे उर किए जाएंगे। देला क्रीमाटोरियम मार्टलिंकवेख 103-101 रोटरडम में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉय को बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉय को बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। मारी बहादुर के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि पहले सूरीनाम निवेरखफोंदनवेख मिस्टर बोईती के निवासी थी। कापेला आंदन ऐसल से बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयक बहादुर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 82 साल की आयु में त्वेयन तख्त यार औत बेटा ब्रिज आनंद कुमार बॉयक बहादुर की माँ रोटरडम ऐसल मोंद लेयरवार्ड की रहने वाली श्रीमती राम कुमारी बहादुर सुखदेव की मृत्यु हो गई है और इन्हें लोग मारी बहादुर के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया सोमवार दिन में 2 बजे मांदांद त्वे यूर किए जाएंगे देला क्रीमाटोरियम मातलिंक वेख 101 रोटरडम जुइट में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-51-52-02-71 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बहादुर के दुख में शामिल।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए नीदरलैंड और सूरीनाम से परिवार कांधाई और परिवार झंझन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सनिचर को 73 साल की आयु में द्रियन जीवंतख यार और लुविस झंझन कांधाई और परिवार जॉनी कांधाई और परिवार कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक इन सभी के भाई अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कांधाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले पथवनवानी का ब्राम्स होपवेख का रहने वाला जो था। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार कांधाई और परिवार झंझन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल शनिचर 5 तारीख सितंबर को 73 साल के आयु में द्रियन जेफंतख यार और लुविस झंझन कांधाई और परिवार जॉनी कांधाई और परिवार कार्ला कांधाई और सूरीनाम से वेली पाटक इन सभी के भाई अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान रॉबी सामनारायण कांधाई की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। रॉबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले पथवनवानी का ब्राम्स होपवेग का रहने वाला था। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार 11 तारीख सितंबर दिन में 1:30 बजे फ्रेडखानस्टांड हाल्फ ट्वी किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 272 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फ्रजोरखिंग समस्त परिवार कांधाई परिवार झंझन और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

तूने मुझे चोरी से अपना बनाया और फिर हमें रोना सिखाया और हंसना सिखाया। क्या बात है। कामचोर फिल्म से आप सुने किशोर कुमार एंड लता जी से, और ये तो उजाला रेडियो है, आपको तो मालूम ही है ना। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे, मैथ्स लक्षणा पंडित जी।

भीगी भीगी वादियों में खो जाने को दिल कहता है सनम। मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम दिल ही दिल में, उजाला रेडियो पर अन्य लता जी के साथ मुकेश जी।

सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

ये है उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर। उजाला रेडियो के साथ ये खूबसूरत संगीत यात्रा यहीं पूरी होती है। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद।

उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। एक और भाग यहीं से अब आप सुनने को जा रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा तो इस प्रोग्राम को दो भाग में हम बनाते हैं। उजाला रेडियो पर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें आप तो ईमेल भेजिए info@ujala.nl हमारे नाम से तो पहुंच जाएगा। चलिए इस भाग में जो गीत आप सुनेंगे पहली गजल होंगे गुलाम अली साहब की आवाज में पेश है।

बड़ी लंबी जुदाई फिल्मी गजल आप सुने, फिल्म हीरो से और गायिका थी रेशमा। उजाला रेडियो है ये, तलत अजीज एक बार फिर हिस्सा ले रहा है।

हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। तलत अजीज की आवाज में आप सुने फिल्म उमराव जान से। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये गीत और गजल की दुनिया। अब मुकेश जी से एक गजल हम आपको सुनाना चाहेंगे, प्लेलिस्ट पे रखता हूँ।

मुकेश जी की आवाज में आप सुने कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जगजीत सिंह एक बार फिर हिस्सा ले रहा है।

0: इस सुंदर गज़ल को आप सुने नूर जहां की आवाज़ में। ये बता दूं कि मुझे मालूम है कि हर एक को गज़ल सुनना पसंद नहीं है, ये हमें मालूम है, पर एक बात और कह देता हूं कि जिस दिन गज़ल सुनना पसंद करोगे, शुरू कर देंगे, तो फिर समझ लो कि और कुछ नहीं सुनना चाहेंगे आप गजल के अलावा, यकीन कर लो। अब महेंद्र कपूर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।
1: अभी अलविदा मत कहो।

बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, महेंद्र कपूर की आवाज में गीत आप सुने फिल्म निकाह से। उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम का नाम।

हाँ मुझे मालूम है, दोबारा हम आज इस गज़ल को चलाए अपना प्रोग्राम में मेहदी हसन की आवाज़ में, मुझे मालूम है, लेकिन हम दोबारा सुनना चाहते थे, इसलिए तो जगजीत सिंह की बारी है।

ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अभी आप सुने जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह से। और सुनने वालों, प्रोग्राम का नाम गीत और गज़ल की दुनिया, स्टेशन है उजाला रेडियो। और अब हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में अहमद रुश्दी साहब, अहमद रुश्दी साहब, हाँ।

तो अहमद रुश्दी से आप सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, इस हिस्सा में आखिरी गीत आप सुनेंगे। हाँ, और हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे ऐसा ही प्रोग्राम को लेकर के, और हमारा इंतजार करना। हम तो उसी उम्मीद को लेकर के यहाँ बैठेंगे कि आप फिर हमारा प्रोग्राम को इसी तरह से सुनेंगे।

ये उजाला रेडियो है, इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजली के साथ। और आपको तो मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम को सुने और लुफ्त उठा सके। तो चलिए हम ला रहे हैं तलत अजीज और पेनाज मसानी को।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई। तलत अजीज और पिनाज मसानी, इन दोनों से आप सुने।

हंसने की आदत ना होती, तेरे लब को हंसने की आदत ना होती, तो फूलों को खिलने की चाहत ना होती। अनूप जलोता जी की आवाज में आप सुने, ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

कहां हट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। भूपिंदर सिंह की आवाज में गजल को आप सुने, उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया।

रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। आबिदा परवीन की आवाज में गजल आप सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। आपके साथ, हाँ आपके साथ साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं हमेशा कि हजारों लोग ना सुने, सुने या ना सुने, आप जो सुनते हैं ये हमारी खुशनसीबी है, और सुनने के लिए आप हर एक को बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार फिर वही दियो तलद अजीज एंड पिनाज मसानी।

ये बहार कह रही है सुंदर गीत को आप सुने तलत अजीज और बेनाज मजानी इन दोनों की आवाजों में। और अब एक बार फिर अनूप जलोता जी हिस्सा लेंगे।

हमको हाँ हमको किसी के गम ने मारा, हमको किसी के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही समाप्त किया जा रहा है अब प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। आशा है आपको पसंद आए हुए होंगे।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ